अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।
1: आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों

ताली तक जमी तक ताली तक जमी तक धला आम तक जुगे तक ताली के नदी तक नक तक जुम तक नक नक जुम तक नक नक जुम तक नक नक जम धरिता जग धरिता जन जाने को धारी दामू तारी गेटे ताली जम धरिता जग धरिता जन जाने को धारी दामू तारी गेटे जम तारी जग धारी जग नक तक तक जिंद तक जुम तक जिंद तक जम तारी जग तारी जाने जाने को

0: चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी है
1: जम धरिता जग धरिता जन जाने को गुदारी दाबू दारी केटे ताली जम धरिता जग धरिता जन जाने को गुदारी दाबू दारी केटे जम धरी जग धरी जग धग धग तजन तजन तज जम धरी जग धरी जन जाने को तजन तक धंग धुम कर धुम तक धंग धुम
0: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी है।

क्या खूब आंखें है तेरी, क्या खूब आंखें है तेरी, जी लेंगे देख देख कर इनको। फिल्म काम चोर का गीत आप सुने किशोर कुमार और अलका याग्निक से उजाला रेडियो पर।

तुम क्या मिले जाने जा, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। लता जी एंड उदित नारायण, फिल्म सातवां आसमान से आप सुने। अब एक बार फिर लता जी, इस बार मनमोहन सिंह के साथ, फिल्म वारिस का गीत।

जिंदगी से हो गया। लता जी एंड उदित नारायण, फिल्म सातवां आसमान से आप सुने। अब एक बार फिर लता जी, इस बार मनमोहन सिंह के साथ, फिल्म वारिस का गीत।

जी रहा तेरे लिए, तेरे लिए जी रहा मैं. यहाँ प्रख्तक मोए गाना ये होर समीर बाय उजाला रेडियो. दैट वाज द सिम फन जसीम शर्मा समेत शिल्पा राव, और गाना का नाम रहा मैं जी रहा. Ja, ik zeg, neem je leven niet zo serieus. Neem het niet zo serieus. Lach om jezelf, lach om de rare situaties. Lach om de fouten die je maakt. Kortom, leef en geniet van alles.

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनेटरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से लड़कन रामदीन और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हफ्ता सोमवार 17 तारीख को 89 साल के आयु में नीखनन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय पत्नी श्री कृष्णा कुमारी रामदीन पोल्टो का पति लड़कन रिकार्डो शोरली इवन हैंक और तेलमा जो मैं

बेहद ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हफ्ता 17 तारीख अगस्त को 89 साल के आयु में नई खनन तख्तख यार औत स्वर्गीय पत्नी श्री कृष्ण कुमारी रामदीन प्योटो का पति लड़कन रिकार्डो शोरली इवान हैंक और तेलमा रामदीन के पिता आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सेउदत रामदीन की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। बैरत के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया ये आज मंगलवार के दिन में 1:30 बजे फमेदाख हालफ्तवे किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडोर्फ में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 28 41 91 71 06 28 41 91 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार रामदीन के दुख में शामिल है।

प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब यहाँ से हम अपना प्रोग्राम सबरंग शुरू करते हैं। सभी सुनने वालों को अदाब अर्श और नमस्कार। मैं हूँ आपका हम सफर निशा। अपने संगीत के खजाने से हमने सुनहरी दौर के नगमे चुने हैं, ऐसे नगमे जिसमें मीठी यादें जुड़ी है और शायद कुछ खट्टे भी। आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में इस प्रोग्राम से लुत्फ उठाइए। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में आंसू आ जाए तो उस रब से चुपके चुपके बातें कर लिया करे। वो सब जानता है लेकिन आपसे सुनना चाहता है।

प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको मजहबी और भक्ति गायन पेश किया। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम में हम गजलें सुनाने को जा रही हूँ। पहली गजल पेश है हरिंद्र खुराना की आवाज में। सुनाने से पहले एक शेर अर्ज है। फजा में महकती शाम हो तुम, प्यार में छलकता जाम हो तुम, सीने में छुपाए फिरते हैं हम यारे तुम्हारी, इसलिए इसलिए मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम। मुझको दुआए दो, मुझको दुआए दो कि मैं दीवाना हो गया।

कि मैं दीवाना हो गया। हरिंद्र खुराना से आपने अभी ये गजल सुनी। मन महकता है किसकी खुशबू से, कौन रहता है फूल सा मुझ में, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं।

शहनशाह गजल नवाज मेहंदी हसन से पेश थी ये गजल। अगली गजल आइए सुने जगजीत सिंह की आवाज में। आंसू तब नहीं आते, आंसू तब नहीं आते जब आप किसी को खो देते हैं। आंसू तब आते हैं जब आप खुद को, जब आप खुद को खोकर किसी को पा नहीं सकते और वो किसी और के हो जाते हैं तो कितना दर्द होता है।

अभी आपने जगजीत सिंह से ये गजल सुनी। आज जब दर्द हुआ तो तेरा याद आया, मेरा प्यार में तुझे दर्द का एहसास तो जरूर हुआ होगा। बस एक दिल बता, बस एक दिल बता जो बिना दर्द के कभी मोहब्बत किया।

अभी आपने जगजीत सिंह से ये गजल सुनी। आज जब दर्द हुआ तो तेरा याद आया, मेरा प्यार में तुझे दर्द का एहसास तो जरूर हुआ होगा। बस एक दिल बता, बस एक दिल बता जो बिना दर्द के कभी मोहब्बत किया।

तलत महमूद और सुरैया की आवाज़ों में पेश थी ये गज़ल। कलाम था महान शायर मिर्ज़ा गालिब का। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अभी आपने गज़ल सुनी। गज़ल एक ऐसी शैली है जिसमें शायर दिल की गहराई में डूबकर निखारते हैं। प्रोग्राम का रुख बदल देते हैं। अब हम आपको लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में ये दो गाना सुनाते हैं।

संगीतकार श्री रामचंद्र का संगीत और महान शायर राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज में पेश था ये नगमा। लता मंगेशकर से आइए सुने अगला गीत, पर ही है यूं तो किताबें हजारों, मगर मगर हकीकत में जो सबक मिले हैं अपनी जिंदगी से मिले हैं, कोई कदर जाने ना।

फिल्म भाई भाई में से ये गीत पेश था। राजेंद्र कृष्ण का लिखा बोल और संगीत दिया है संगीतकार मदन मोहन। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को, जहां गम का पता न था, जहां दुख की समझ न थी, जहां बस मुस्कुराहट थी, बहारे ही बहारे थे, कि जब सावन बरसता था तो उस कागज की कश्ती को बनाना और फिर डुबो देना बहुत अच्छा सा लगता था। और इस दुनिया का हर चेहरा बहुत सच्चा सा लगता था। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, उसी मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को।

बचपन याद आए, उन लम्हों की यादों में एक पल के लिए मुस्कुराए तो होंगे जरूर। शमशाद बेगम की आवाज में पेश था ये गीत। अगला गीत आइए सुने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।

फिल्म अंदाज में से ये दो गाना पेश था ओपी नैयर का संगीत और कलाम था ज्ञान निसार अख्तर का। अब तो वही होगा जो दिल फरमाएगा, करीब आ जाओ कि जीना मुश्किल है तेरे बिन, अपनी नज़दीकियों से दूर ना कर मुझे।

आप सभी सुनने वालों को निशा फिल्मी दुनिया में इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। इस हिस्से के प्रोग्राम फिल्मी दुनिया में कोशिश है मेरी उन महान फनकारों के बारे में रोशनी डालने को, जिन्होंने अपने फन से हम सब के लिए खूबसूरत यादें छोड़ गए हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से फिल्मी दुनिया की ऐतिहासिक किताबों में उनके नाम सुनहरी अक्षरों में चमकते हैं। आज से लेकर कुछ प्रोग्रामों में हम एक ऐसे ही महान शख्सियत के बारे में बयां करेंगे। आप शायद सुने होंगे कि 16 जनवरी को महान संगीतकार ओपी नैयर की पैदाइश का दिन याद किया जाता है। ओपी नैयर अब हमारे बीच नहीं रहा, पर वो हम सब संगीत प्रेमियों के लिए अनमोल खजाने छोड़ गए हैं। इस महान संगीतकार, जिसका पूरा नाम ओमकर प्रसाद नैयर था, कोशिश करेंगे उनके संगीत सफर पर तवज्जो डालने को और जरा सा उनकी निजी जिंदगी पर एक नजर डालने को। उनके सजाए हुए संगीत और गाने में वही ताजगी, वही लोकप्रियता है जैसे 40 और 50 साल पहले था। कैसे हम भूल सकते ओपी नैयर की सजाए संगीत फिल्मों में, जैसे आर पार, हावड़ा ब्रिज, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे सनम, कश्मीर की कली। प्रोग्राम के दौरान हम आपको एक के बाद एक लाजवाब, दिल छू लेने वाले नगमे सुनाएंगे। ओपी नैयर की संगीत में कुछ खासियत है, एक अलग सी पहचान है जो आज तक पसंद की जाती है।

फिल्म आर पार में से आपने अभी ये गीत सुना। इस फिल्म में ओपी नैयर ने संगीत दिया और गायिका थी शमशाद बेगम। आज हम ओपी नैयर की बचपन के बारे में बातें करेंगे। कैसे थी उनका बचपन? बचपन से ओपी नैयर मतलब ओमकर प्रसाद का सपना था एक महान संगीतकार बनने को। उन्होंने एक्टर बनने के भी सोच रखा था, पर उनका बाप नैयर ये देखना चाहते थे कि ओमकर प्रसाद एक दिन पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा। 10 और 17 साल के दरमियान पढ़ाई किया, पर साथ ही साथ ओमकर प्रसाद संगीत में भी वक्त बिताते थे। जैसे मैंने कहा, उन्होंने संगीत की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे ताकि दुनिया उसे संगीतकार के रूप में इज्जत करे। स्कूल जाने के लिए उसे जब पैसा मिलता था तो ओमकर खाने पीने में पैसा उड़ा देता था और दुकानों में जहां संगीत बजते थे वहां दिन गुजारते थे। एक दिन जब उनका वालिद सवाल किया कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो बेटा बेफिक्र होकर अपने वालिद से कहा कि वो स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता है। पढ़ाई में इतना बेपरवाही बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ। नैयर अपने आप को नहीं संभाल पाया। वो अपने बेटा ओमकर को जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तुम सिर्फ हारमोनियम बजाने के लायक होगे, आगे क्या होगा हम आपको एक गीत के बाद सुनाएंगे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से आपने अभी ये गीत सुना। फिल्म फागुन का गीत था, इसमें ओपी नैयर ने संगीत दिया। इस गीत से पहले आपने सुना कि ओमकर प्रसाद का वालिद नैयर अपने बेटा पर नाराज था क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं पसंद करते थे। उसे एक्टर बनने का शौक था या संगीतकार बनने का। बाप की थप्पर से ओमकर प्रसाद को संगीत की दुनिया में कदम रखने को और मजबूत कर दिया, पर कैसे ये आसान नहीं था। ओमकर प्रसाद कोशिश किया संत शायर कबीर का दो टुकड़ा कबीर वाणी सजाने और खुद गाने के लिए, साथ में दो और पंजाबी गीत गाए, पर अवाम इसे पसंद नहीं किया। ये एहसास कि अवाम इसे नहीं पसंद किया, वो हिम्मत नहीं हारा। ओमकर प्रसाद अब एक स्टूडियो से दूसरी स्टूडियो की दरवाजे पर दस्तक दिया, पर काम के लिए जो काम उसे मिल जाता उसे सब मंजूर था, पर बार बार मायूस होकर घर लौटना पड़ता था। संगीत की दुनिया में कब और कैसे कदम रखा, सुनाते हैं एक गीत के बाद।

हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुहाई। फिल्म ये रात फिर न आएगी का गीत था। ओमकर प्रसाद का दोस्त फिर उसे एक दिन सलाह दिया पेशकश पंचोली से मिलने को। पंचोली फिल्म कंपनी का मालिक था और कई फिल्म रिलीज कर चुके थे। फिल्में जैसे खजांची, खानदान और फिल्म शिरीन फरहाद। बड़ी हिम्मत के साथ ओमकर कदम उठाया पंचोली से मिलने को, पर वहां का फिल्मी माहौल देखकर ओमकर प्रसाद की हिम्मत पानी पानी हो गई। इतना बड़ा फिल्म कंपनी का मालिक पंचोली साहब कैसे उनका सामना करता। ओमकर का दिन अब उदासी में गुजरता था। जोश व जज्बे की कमी की वजह से डिप्रेसिव की हालात में एक गीत सजाए, और वो कौन सा गीत था आइए सुने।

प्रीतम आन मिलो। जी हाँ, इस गीत को सजाने वाले थे ओमकर प्रसाद, जिसे बाद में ओपी नैयर के नाम से मकबूल हुआ। इस सजाई हुई गीत से ओमकर की कामयाबी की शुरुआत थी, पर बड़ा रकम उसे नहीं सी एच आत्मा को दिया गया। अब बात यह थी कि जब फिल्म कंपनी का मालिक पंचोली ये गीत सुना तो वो बेताब थे उस शख्स मिलने को। मिलने के बाद पंचोली ने फैसला किया ओमकर प्रसाद और सी एच आत्मा को अपने नई फिल्म के लिए, पर हालात ऐसा होने नहीं दिया। पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा इन सब को बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। कहानी दिलचस्प है, एक गीत के बाद हम बातें आगे बढ़ाएंगे।

गीता दत्त से आपने अभी ये गीत सुना। पंचोली अपना कारोबार छोड़कर इंडिया जाने का फैसला किया और परिवार नैयर भी लाहौर से इंडिया चले गए, पर ओमकर प्रसाद अपने परिवार के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब हालात इतनी बिगड़ने लगी थी कि वो भी नेहतीन सेफन फेतह में लाहौर से अलविदा लिया और अमृतसर अपने रिश्तेदार के पास चले गए। अमृतसर में डर बदर ओमकर काम ढूंढा तो उसे पटियाला स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाने का मौका मिला। इसी तरह कई जगह वो संगीत सिखाते थे पर उसे सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि संगीत की दुनिया में ओमकर प्रसाद बड़े बड़े सपने सजाए थे और इस सपना पूरा करने के लिए उसे अमृतसर छोड़कर बॉम्बे जाना होगा। तो इसी तरह ओमकर प्रसाद रेलगाड़ी का टिकट लिया और रेलगाड़ी से बॉम्बे चले गए अपना तकदीर आजमाने। बॉम्बे में कितना मुश्किलात का सामना किया हम आपको अगले प्रोग्राम में इतला करेंगे।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हम महान संगीतकार ओपी नैयर का संगीत सफर के बारे में बयान किया। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं।

मोरे राजा हो ले चलो नदिया के पार, सदा बहार गीत था। इस गीत के साथ आप जरूर गुनगुनाए होंगे, गीत है ही इतना खूबसूरत। आइए सुने अगला गीत।

शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र का गीत रचना था। गायिका थी लता मंगेशकर। तुम थे तो कहीं वक्त ठहरता नहीं था, अब वक्त गुजरने में बहुत वक्त लगता है, बस इतना ही कहना था।

किशोर कुमार से आपने अभी ये नगमा सुना, राहुल देव बर्मन का संगीत और राजेंद्र कृष्णा का लिखा तर्ज। अगला गीत आइए सुने मन्ना दे और लता मंगेशकर की आवाजों में।

शैलेंद्र का गीत और शंकर जयकिशन का संगीत था। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की। प्यार भरा डो गाना आइए सुने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में।

हसरत जयपुरी का गीत रचना और शंकर जयकिशन का संगीत रचना में पेश था ये दो गाना। इसी अंदाज में आइए सुने अगला गीत हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से सबरंग प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा पेश करने को जा रही हूँ। आप सभी को एक बार फिर प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रूह को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना।

हाँ दीवाना हूँ मैं इस खूबसूरत दिल छू लेने वाले तर्स भारत व्यास दिल के कलम से लिखे हैं। सरदार मल्लिक का संगीत था और मुकेश अपनी आवाज से इस गीत में चार चांद लगाए हैं। ऐसी आवाज कहाँ है अब, तो लीजिए एक बार फिर मुकेश से आइए सुने अगला गीत और इससे लुत्फ उठाइए।

फिल्म माय लॉ से आपने अभी ये नगमा सुना। जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी गर्दिशे जमाने की।

सदाबहार गीत संगीतकार ओपेन नैयर का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी का गीत। आवाज थी गीता दत्त की। एक बार फिर आइए गीता दत्त से अगला गीत सुनें।

0: कभी कभी तो मिठ मिठ।
1: खूबसूरत आवाज में और ना भूलने वाले गीत आपने अभी गीता दत्त से सुना। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं मोहम्मद रफी के गाए हुए गीत से।

आएगी का नगमा था, ओपन एयर का संगीत और अनजान का लिखा तर्स। उसकी आवाज सुन लो, उसकी आवाज सुन लो तो मिल जाता है सुकून दिल को। देखो तो सही मेरे दर्द का इलाज कैसा है, सुकून ही खुशी है।

हमारे गीत आपने अभी मोहम्मद रफी से सुना। कभी कभी कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि रो भी नहीं सकता और शिकायत भी नहीं।

महबूब मेरे, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में आपने भी ये दो गाना सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीत मजरू सुल्तानपुरी का था।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम सबरंग से लुत्फ उठा रहे हैं। रोमानी अंदाज में आइए सुने ये गीत और इसे महसूस कीजिए।

0: आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए। कमाल का ये नगमा था और लाजवाब महेंद्र कपूर की आवाज। ऐसे ही रोमानी अंदाज में पेश है ये दो गाना।
1: मुस्कुरा

प्यार भरा दो गाना पेश था। गाने वाले थे हेमंत कुमार और लता मंगेशकर। लता मंगेशकर से आइए सुने अगला गीत।

लता मंगेशकर से आपने भी ये खूबसूरत नगमा सुना। प्रोग्राम में आखिरी गीत आइए सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से दर्कन राम अवतार और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 78 साल के आयु में अख्तन सैफ अंतखियार और स्वर्गीय पति श्री सत्यनारायण प्रसाद की पत्नी लड़कन सौर सिंह, भाइयों अंजनी, गीता, अनिल और भारती राम अवतार की मां, सभी दामाद और पतों के सास और सभी लड़कन के नानी, आजी, परनानी और पर आजी। अम्स्टर्डम जैतोस ददरेख्त की रहने वाली विधवा कमलावती राम अवतार अवतार की मृत्यु आईएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। कमला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले भी फ्रीसलंत लेमर के निवासी थी और उससे पहले सूरीनाम मेयर जोरख में रहती थी। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से लड़कन राम अवतार और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल के आयु में अख्तन सैफ अंतखियार और स्वर्गीय पति श्री सत्यनारायण प्रसाद की पत्नी सौर सिंह, भाइयों अंजनी, गीता, अनिल और भारती राम अवतार की मां, सभी दामाद और पतों के सास, सभी लड़कन के नानी, आजी, परनानी और पर आजी। अम्स्टर्डम जैतोस ड्रेख्त की रहने वाली विधवा कमलावती राम अवतार अवतार की मृत्यु अम्स्टर्डम के आईएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। कमला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया ये कल बुध के दिन में 11:30 बजे मोरखन वोंसडाग 11:30 किए जाएंगे। वेस्कार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में।

मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से परिवार कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन सईफ अंतखियार औत श्रीमती निर्मला कल्लू का पति लड़कन सुनीता और गायत्री कल्लू के पिता और लड़कन के नाना आम्स्टरडम ने उस्लोतन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु आम्स्टरडम के ओंजे लीफ फ्रावखास्टहुइस वेस्ट में हो गई है। मनी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सुरीनाम में पहले इलाका कॉमोवेन का रहने वाला था। आम्स्टरडम से परिवार कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल के आयु में अख्तन सईफ अंतखियार औत श्रीमती निर्मला कल्लू का पति लड़कन सुनीता और गायत्री कल्लू के पिता और लड़कन के नाना आम्स्टरडम न्यू स्लोतन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु हो गई है। ओंजे लीफ फ्रावखास्टहुइस वेस्ट में इन्हें लोग मन्नी के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सुरीनाम में पहले कॉमोवेन का रहने वाला था। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आने वाले बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक डोंडरदगावंड फन सेवन टॉट आठ उर उत्फार्ट सेंट्रम वेस्टगार्डे के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 बजे फ्रेडक मेदक 4 उर किए जाएंगे। वेस्टगार्डे क्रिमेटोरियम ओक मेरवेग 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फुरजोरखिंग समस्त परिवार कल्लू के दुख में शामिल है।

सबसे पहला सिलेक्शन आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया सोनू निगम और साथियों की आवाज में। शुक्रन अल्लाह स्टेशन है यू आर उजाला।

मिले जुले संगीत कुछ मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुछ फिल्मी सिलेक्शंस और लोकल नगमे भी हम आपको सुनाने वाले हैं, और ऐसे में हो जाए नदीम खान और साथियों की आवाज़ में, आओ ना गले लगाओ ना।

0: आओ ना गले लगाओ ना लगी को बुझाओ ना नदीम खान और साथियों की आवाज में। हमारे सभी श्रोताओं की खिदमत में कुछ मिले जुड़े संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग्स पेश किए जा रहे हैं। युवाओं का पैगाम है, हर एक को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं,
1: ook in de wintermaanden is Ujala Radio het zonnetje in huis. Ujala Radio. Ujala Radio. Jouw muziek, jouw ritme.

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनान को जा रहे हैं आंस्टांड ज़ादादाग नहीं नित्वेंद एंड ज़ोंदाग दर्तख अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर। हाँ, तुम मोइस सुन रहे हैं भीतर जिया इवेंट सेंटर दनाख में। आप सुनने को जा रहे हैं नहमा इस बार प्रोग्राम में, हम ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओ कमवेज़ और ब्राज़ा फेस्ट।

और सुनने वालों, ब्रास फेस्ट पर रहेगा उमर एंड स्कॉट मैट, उमर वाइक डिजाइन हुयाना एंड रखिलियो। कॉपी टिकट्स ये सुपर अर्ली बर्ड टिकट्स विया brasafest.nl।

एक ऐसी आवाज जो हर शख्स की पर्सनालिटी में डल जाती थी, वो थी रफी साहब की आवाज। उनकी आवाज में गाई हुई गैर फिल्मी गजलों ने क्या गजब ढाया।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

खाली दिल नहीं जान भी है मंगदा। अलका जी एंड हंसराज हंस, फिल्म का नाम कच्चे धागे। उजाला रेडियो है, ऑन टेलीफोन नंबर 020-409-0807। और अगला गीत प्रोग्राम में जो आप सुनेंगे तो होंगे अब रूना लैला की आवाज में, पेश है

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे। जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है यह भी तो पता नहीं चलता। तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म कन्यादान का गीत।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनर ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दियो। इस प्रोग्राम में दर्द भरी गीतों हम आपको सुनाते हैं, जिन गीतों को सुन करके कभी दिल को सुकून मिलता है और कभी दिल का दर्द जो है तो और बढ़ जाता है। कैसा भी हो, कुछ भी हो, प्रोग्राम आप ही के लिए बनाया जा रहा है और इत्मीनान से आप सुनिए, जिसमें अब पेश है पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: कहना।
1: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किशोर कुमार की आवाज में आप सुने 1972 की फिल्म 1972 की फिल्म अमर प्रेम से। राहुल देव बर्मन म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के लिए और काम किए उन दिनों शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना।

पत्थर के सनम, हमने तो तुझे खुदा माना। बड़ी भूल हुई, हमने क्या सोचा और हमने क्या समझा। और फिल्म पत्थर के सनम से गीत को आप सुने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। 1967 में फिल्म बनाई गई है नेखंतिन जीफन जैस्तख में, और लक्ष्मीकंद प्यारेलाल म्यूजिक कंपोजर, और फिल्म में काम किए मनोज कुमार, वहीदा रहमान, प्राण और मुमताज़। और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम दर्द दिल के साथ।

प्यार पुकारे लता जी की आवाज में गीत को आप सुने। फिल्म दिल ने फिर याद किया 1966 की फिल्म और सोनिक ओमी म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के लिए फिल्म में काम किए धर्मेंद्र के साथ नूतन जी।